ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए धन सुमानस नानका जो गल चलै पाए चौकड़ मुलिय नाया बे चौके पाया सिखा कान चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओ मुआ ओ चढ़ पिया।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जो चल खसमै पाए हुरमत सनोगली बजो भे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाई अगला मोह मोह पाना खाए जिसदा दिता खाव ना दिस कही है साहबास नानक हुकम ना चल रही नाल खसम चलै अरदास।

के परावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार।

तुदिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म दे सजन सचा पात साहु सिर साहांदा जिस पास बैठे आ सोही सबना दावे।

जिस पास बैठे आ सोही है सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पांजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर परस।

कर्ण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ सब जग जिन उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ किन कहिए क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गोर गोविंद सलाहिए भाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता

रहाउ। जाके कर सब किश है पाई, नानिद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा आगम अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पेटिए पाई, शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरे भी है पाई, भ्रम पौ होवै नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे परगास, गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर, काट काट ब्रह्म पसारिया पाई, पेख सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थ पाई, सर्ब कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल परगासी है पाई, हृदय होवे परगास, प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया धरत आकाश, गुरपुर संतोखिया पाई, अहनस लागा पाओ, रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीवया पाई, निहचल पाया था। जिस

हाँ तिसके बल जाओ, ओहो निर्गुणी आरे पालदा भाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिया पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस दिन घड़ी ना जीविया पाई, सर्ब कला भरपूर। सास गिरास ना बिसरे पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार। कर किरपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार।

0: अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत।

रंग परंगिया नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किछ तेरे वस तेरा घर पला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जरे सर्ब कला।

0: माता तरत महत दिवस रात दोयदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचत्र महदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल
1: जिनी नाम ते आया गे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
0: फतेह।
2: ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

दुखदारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होई, तू करता करना मैं ना ही जाहूं करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कलाम पर पूर रहया।

पुत्रे सगल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

लागे वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। जी को खावै जी को पुंचै, तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी न जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महा।

तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। वा

कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु श्रवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोह होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहण माणक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठों श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पए धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार दे अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध संदीपक ज्यों उजियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले कातुरता कुतवार बुहारे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह जिस पास बैठिया सो

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लावह। बिखम नदी जाए तरणी, सुख संपत माया रस मीठे, यह नहीं मन मह तरणी। हर दर्शन तृप्त।

सुख संपत माया रस मीठे, एह नहीं मन मह तरणी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पा।

एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जा। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है। सवना दा विसाहु सजन।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागै फिरे जल विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडै विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगै प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद।

0: कड़िया सबे गोपियां पर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मोसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैरलायन फिरन सर उडड़ावा झट पाए वेख्या लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत लाटू मदानिया अनगा पंखी पौंदिया लैन साब सोह चढ़ पवाइया जंत नानक पौंदिया गणत नंत बंदल बंद पवाए सोए पया कृत रचा सब कोय नच नच हसै चलने से रोए उड़ना जाही सदना होए नचन कुदन मन का चाओ

ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विचार रखन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार जिन सच्चे सोच दिलाया। जग जीवन दाता पाया।

0: तिस जो हरि सुवस्त तिस तिस दिवान भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निकियां चंगियां लख पन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहजुग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नसान पौड़ी सच्चा सब एक तो।

0: शिव गवाईया शिव गवाईया शिव गवाईया
1: बड़ी दान मिंडा तली खाक जे मिले तमस तक लाईया कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन लगते आईया पलते वे हो पाईए जे वे ही कर कमाईया जे होवे पूरब लिखिया ता तूड़ती ना दी पाईया मत थोड़ी शिव गवाईया मत थोड़ी शिव गवाईया।

0: कहो नानक करते किया बता, जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जो सबदंग ज्ञान सबदंग बे सबदंग ब्राह्मण है, कतरी सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत है, सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पियो, नानक ता का दास है सोई।

0: अर्जुन माहे तरी।
1: जग और न जाहे महात्म मैं, अवतार अजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद बभेद न जान बियो, पर ताशर दे गुर अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदय, तब लो प्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पसतायो। तत् विचार जहे मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
2: कद समुंदर पै रूप प्रगटे, हर नाम उधारने, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन। निर्मल पेख अपार तास बिने वरना कोई, मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई। तरन गगन नव खंड मह, ज्योत स्वरूपी रहो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन पर तख हरे। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचियै, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टुलै, नाम अमर मुख दियो, गुरु अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुरु रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जस संच रहो, सो कमन कह श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो, श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव, तोहे जस जय जय जंपै, असुर गेते भाग, पापिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन का दे आयो।
4: सतगुर खिमा ताणिया, जुग जूत समाणे, अन पौ ने जा नाम टेक, जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत, हर संग समाणे।

दुख होवै सिफत दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तद डिठे सच्चे पात सह मल जन्म सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांदा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला नावा मान रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो मान रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गन कासी उदरी

अटल भयो तू जाकै सिमरन, हर निरभय पद पाया। दुख हरता एह बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्रह ते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो वर्णो, राम कहत बंधन तेह टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतर है पारा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता माना, तै भी उतर है पारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नावा, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेहे सिमरत गनका सी उदरी, ताको जास उर तारो।

0: क्या थी है जर देख सुदे जाय महला पहला
1: पड़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूछ बगल समादम मुचूड़ भी भूखण सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गल माला तिरक लिलाटं दो तोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट नस छो कर्मं को नानक ने चुत्यावे मन सतगुर बाट।

0: सुर हया पर पूरे बलवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

0: चौकड़ मोलनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओह मुआ ओह चढ़ पया बेतगा गया महला पहला।
1: लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लठगिया पैना मिया रदन जी नक पहो कती है बमन बटे आए कोई बकरार नखाया सबक वख पाए कोई प्राणा सुटिया भी फिर पाइया होर नानक तक न

0: आई तो तीट कते जप माले तहन मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पहाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करेने बाज छुरी बगायन तिन गलताग तिनक ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा वापार कुड़ बोल करे आहार संतरम का डेरा दूर नानक उड़िया भरपूर मथे टका तिड़ दोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई निर्वस्त्र पैर वे प्रवान मलिश्तान ले पूजे प्राण अपाख्या ककुठा बकरा खाना चौंके उपर कसैना जाना देखा चौंका कड्डी कार उपर आई बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै यो अन्न साडा।